0: अमोरे मियो दोवे साय तू, ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: पंचम से एक परिचय वो था जिसे मैं 30 साल जिया और भरपूर जिया हूं पूरी सरगम के साथ। संगीत के तो सिर्फ 7 ही सुर हैं मगर पंचम की शख्सियत में बेपनाह सुर थे और सारे के सारे हमने एक साथ जिए। अब ये एक और परिचय है उसकी चुप का जो तभी बीतेगा।
1: गोरे भैया तो फिर

ये गाना लता भाई ने भी गाई और किशोर दा ने भी गाया। मैंने जब ये गाना सुना है तो पहले किशोर दा ने कहा कि नहीं भाई ये गाना तो मेरे मुझसे होगा नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं, तुम लता को पहले रिकॉर्ड करो। तो लता भाई को जाकर रिक्वेस्ट कर शी सैंग दिस सॉन्ग। मैंने कहा कि ये शिवरंजनी राग है, हमने कहा राग की ऐसी की तैसी, मुझे ये गाना सुनाओ मैं बायट करके वैसे ही गाऊंगा। तो उन्होंने वो गाना सुना और सुन के कम से कम 7 दिन तक सुने, तो जिस दिन आके गाए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीख के गा रहे, लग रहा था कि वो मन से ही गा रहे।

0: चलते चलते ये मुसाफिर देखो कहाँ चला गया। 1955 या 56 की बात है, महालक्ष्मी स्टूडियो में मुझसे ऑटोग्राफ लेने आया था, शर्ट और शॉर्ट्स में था। मैंने सुना था पंचम बड़ा शरारती लड़का है, इसलिए मैंने बड़े प्यार से लिखा बदमाशी छोड़ो। उसके बाद 1961 में मिला अपने पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, वही उसी स्टूडियो में। गाने की पहली लाइन सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि पंचम आगे चलकर बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा। मेरे इस ख्याल को पंचम के संगीत ने साबित कर दिया।
1: मेरा पहला गाना छोटे नवाब फिल्म का था और उसमें दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी एंड शी वाज सो सिंपल।

0: श्री आर डी बर्मन जी, हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
1: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है।

0: गजरा।
1: आरडी बर्मन की बात कर रहा हूँ, जिसको पंचम प्यार से बोलते थे। वो एक ऐसा स्टाइल लेके आए जिसमें बोल भी है, जिसमें रिदम भी है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी है, और जिसमें एक

युगों से आज तक हर युग में जब जब संगीत का युग आया, जब संगीत में क्रांति आई, आशा दीदी की आवाज ने उन क्रांतियों को हर मोड़ पर एक नया रास्ता दिखाया। तुम ही संगीत की जगह हो, तुम ही संगीत की क्रांति हो, ये सफर जारी रहेगा। दम मारो दम, मिट जाए गम, गम की दवा तो आपकी आवाज है, गम की दवा शराब नहीं।

सस्ता समान सस्ता नहीं, हाई एंड दा समान मिले सस्ता। मैं हां थवाडा रोहित यसमैन रिट्स फर्नीचर तो, जिथे लग चुकी है विसाखी सेल, जिस च एशली मेड इन कैनेडा फर्नीचर मैटसा ते घर नु सजाण वास्ते एक्सेसरीज ते लग्जरी एरिया रग्स ते लग चुकी है 40-70% ऑफ सेल। जिवें के यसमैन हमेशा ऐलान करदा है कि वी डोंट मैच द प्राइस वी बीट इट, सो थोड़े कोल कोई भी फ्लायर हैगा या कोटेड प्राइस साडे कोल रिट्स फर्नीचर ते लैके आओ, असी उस प्राइस नु मैच नहीं बीट ते करांगे, ओदे नाल नाल थोनू वर्ल्ड क्लास सर्विस भी दित्ती जाएगी। रिट्स फर्नीचर 5200 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी एंड 401-905-232 रिट्स 7489 रिट्स फर्नीचर planet.ca। सस्ता सामान सस्ता नहीं, हाई एंड दा सामान।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

मारे तेरे पीछे वो तू ना राज बादल लाओ जमीन पे ताकि आंसू नए तेरे मुझे दिखे लिखने चलू दिले हाल दर्द दवा पर ये कलम तेरे जिक्र पर ही टिके जितनी दफा ढूंढा सुख खुशी तलब नशा मंजर